0: कथा टॉप स्टोरी
1: नीति विरोधी व विदेश दुम्बटी तोग्याक समग सककरु अंदेदने कत्तडंगुवट नीति विरोधी विदेश दुम्बटी तोग्याक मेरटट रगिना गुवान मगिन देदनेको गुवान तुटुपुल रेगु निलधारिन वेसे नत्तडंगुवट केने तिबेनेपा उन कोलंब प्रदेशे पदिंच 42 हरिद्वीये पसु व्यापारिकयन देदने रेगु निलधारिन विसिन नो नत्तडंगुवट केने ऐत्ते सककरुन विसिन दुम्बटी तोगे मेरटट गेनवा हरितमावतोसे पिटकरगने अमिस